अंत तो हो जाना है, लेकिन ये नहीं जानता कि अनंत के आगे बेअंत है। अंत होने से पहले बेअंत को जान लो तो फिर अगले वाले अंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान है श्रीमती कविता अग्रवाल और आज का विषय रहेगा परिवार और समाज। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं घर परिवार का एक नया अंक। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो न केवल अपने परिवार की आधारशिला है बल्कि समाज के प्रति भी गहरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी रखती है। इन्होंने अपने जीवन में परिवार और समाज के बीच संतुलन को समझने और उसे

0: मेरा पहला प्रश्न आपसे है, हम अक्सर सुनते हैं कि परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक है, लेकिन हर किसी के पास इसकी अपनी परिभाषा होती है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके दृष्टिकोण से परिवार और समाज का क्या अर्थ है।
1: देखिए, जिन लोगों के बीच हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें जजमेंट का डर नहीं होता, हम उन्मुक्त होकर अपने विचार रख सकते हैं, अपने डिमांड्स रख सकते हैं, जहां पर हम फिजिकली और इमोशनली सुरक्षित महसूस करते हैं, जिन लोगों पर हम अपना हक जता सकते हैं, और जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की फिक्र करता है और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेता है, उसे हम परिवार कह सकते हैं। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, तो जैसे ही हम अपने घर परिवार से बाहर कदम रखते हैं, तो जो लोग हमें मिलते हैं वो हमारा समाज है, जिन्हें हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, परंतु उनके प्रति हमारी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसे हमें निभाना ही निभाना है। निभाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई हमारी स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी नहीं है कि हमें उसको निभाना है। उसे हम समाज कह सकते हैं। सब परिवार हैं जो, वो मिलकर एक समाज बनाते हैं और सब समाज मिलकर देश बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं परिवार सबसे छोटी इकाई है और समाज का ही हिस्सा है। हम यह भी कह सकते हैं कि समाज वह जन समूह है जिन्हें हम निजी तौर पर नहीं जानते, ना ही वो और ना ही हम एक दूसरे के दुख सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में बंधे हुए हैं एक मजबूत डोर से।
0: बहुत सही कहा आपने, बहुत ही गहराई से समझाया आपने। ये सही है कि परिवार और समाज एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। आपका दृष्टिकोण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। परिवार और समाज के इस जुड़ाव को हम अपने जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं, ये आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, परिवार और समाज को हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है, आपकी नज़र में इन दोनों के बीच का संबंध किस तरह का है? क्या ये रिश्ता परस्पर सहयोग पर आधारित है या इनमें से कोई एक दूसरे पर अधिक निर्भर करता है?
1: देखिए किरणी जी, ये संबंध जो है ना, ये बहुत ही गहरा संबंध है। हम हर वक्त अपने घर पर नहीं रह सकते। जैसे ही हम अपने परिवार से बाहर निकलते हैं, हम अपने आप को समाज में पाते हैं, या फिर यूं कहिए हम ही वो समाज हैं। हम उसका एक अभिन्न अंग हैं, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। और ये हर एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि उन्हें कैसा समाज चाहिए। जो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें बनना पड़ेगा। अगर हम फूल बांटेंगे तो बदले में फूल ना भी मिलें, कम से कम हमारे हाथ तो महकेंगे ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई परिवार मिलकर समाज बनाते हैं और एक बड़ा परिवार बन जाता है, तो यह हम सबका उत्तरदायित्व है। अपने परिवार की तरह सबसे निस्वार्थ प्रेम करें, सबके साथ सहज रहें और बिना किसी को जज करे उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। तभी तो हम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत ही एक मशहूर लाइन है, वसुदेव कुटुंबकम, तभी तो हम इस नारे को सच कर पाएंगे कि जो हमारा सारा विश्व है वो ही हमारा परिवार है। संबंध तभी बनता है जब दोनों तरफ से सहभागिता हो। अगर हम समाज को अपना परिवार समझेंगे तभी उसके लिए चिंतित होंगे और तभी उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे, सच्चे मन से कुछ कर पाएंगे। बाकी संबंधों की तरह यह भी गिव एंड टेक का रिश्ता है। जैसा दोगे वैसा पाओगे। जैसा समाज हमें चाहिए तो हमें अपने आप को उस समाज में फिट करने के लिए वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे, वैसी ही विचारधारा रखनी पड़ेगी, तभी हम एक मजबूत और एक फ्रूटफुल समाज बना पाएंगे।
0: सही कहा आपने, सचमुच परिवार और समाज के बीच ये तालमेल बेहद अहम है। आपकी बात से ये साफ होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी बातचीत के दौरान हमने परिवार और समाज के बारे में कुछ सीखा, लेकिन अब थोड़ा म्यूजिक का मजा लेते हैं। कविता जी, हम जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा गाना होता है जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, तो आपके पसंद का कौन सा गाना हम श्रोताओं को सुनाएंगे अब?
1: देखिए, जो पुराने गाने हैं वो सारे ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, परंतु एक गाना है जो मुझे बेहद पसंद है। क्या मैं उसे गुनगुना सकती हूँ?
0: हाँ जी, जरूर।
1: तो वो इस तरीके से है, एक

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला प्रश्न मेरा है वो है, आज के समय में जब व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक दायित्व तीनों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनता जा रहा है, आपकी राय में परिवार और समाज के बीच ऐसा संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करे बल्कि सामूहिक हितों को भी बनाए रखे।
1: देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। संतुलन शब्द जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही नाजुक है। जब हमें संतुलन बनाना पड़े, चाहे वो रिश्तों में हो, खाने में हो, बातचीत में हो या समाज में हो, तो बहुत ही नाजुक कार्य है, क्योंकि जरा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो सब बिगड़ जाता है। अब क्योंकि परिवार और समाज दोनों का दायित्व हमारा है, तो हमने दोनों को ही समय देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम परिवार को ही सामाजिक कार्यों में सहभागिता दे दें तो कभी भी संतुलन नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी दूसरे से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी, यहाँ पर हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। ऐसे में व्यक्ति पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, बाद में वो किसी और से एक उम्मीद करेगा। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनना चाहता है। अब वो अपने कार्यालय से या अपने व्यवसाय से तो समय नहीं निकाल सकता, उसके समय के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो अब उसको जो समाज को समय देना है, वो अपने पारिवारिक समय में से ही वो समय निकालेगा, जो कि परिवार के लिए एक खिज का, एक चिड़ का कारण बन सकता है। उसकी समाज के प्रति एक नकारात्मकता भी आ सकती है कि हमारे समय में से वो समाज को समय दे रहा है, और ऐसा होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समझदारी से काम लेते हुए वो अपने सारे परिवार के सदस्यों को उस कार्य का हिस्सा बना सकता है। उससे होगा क्या कि सारा परिवार एक साथ काम करेगा तो वो एक फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य था हम उसको भी पूर्ण कर पाएंगे
0: जी।
1: लेकिन इसमें उस व्यक्ति को बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ेगी और बहुत ही प्रेम से ये कार्य करवाना पड़ेगा, क्योंकि घर के हर सदस्य की सोच और विचारधारा अलग होती है। उसको हमें अगर अपनी विचारधारा में लाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, तभी हम अभी इस कार्य को अपना पूरा कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम सबकी साझेदारी होगी उस कार्य को करने में, तो किसी को हमसे शिकायत भी नहीं रहेगी, हम साथ में समय भी व्यतीत कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का, हम वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
0: ये सुझाव बहुत प्रैक्टिकल और प्रेरक है। संतुलन बनाए रखना शायद आसान नहीं, लेकिन छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संतुलन का ये विचार हमारे श्रोताओं के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा अगला प्रश्न है वो है, आज की व्यस्त जीवन शैली में परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां अक्सर पीछे छूट जाती हैं। आपकी दृष्टि में क्या हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं जो न केवल हमारे परिवार को मजबूत बनाए बल्कि समाज के प्रति भी हमारा योगदान को बढ़ाए?
1: निश्चित तौर पर जब परिवार की बात आती है ना, तो हम किसी भी बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कोई दैनिक बदलाव हो, चाहे हमें अपनी कोई डेली रूटीन में कोई चेंज लाना पड़े, तो हम परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जब समाज की बारी आती है तो हम कुछ कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं कि मेरे पास तो समय का अभाव है, या फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कुछ भी ABCD, हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं जब समाज की बात आती है। और इसकी वजह ये है कि हम समाज को ना अभी तक अपना नहीं बना पाए हैं। जब तक हम उसको अपना परिवार नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे, तब तक हम उसकी किसी भी काम को करने के लिए वो डेडिकेशन हमारे अंदर आएगी ही नहीं, हम अपना योगदान उस तरीके से नहीं दे पाएंगे जैसा हम अपने परिवार के लिए देना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एक सेफ समाज बने। आज के टाइम में हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? समाज, कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हमें यही डर लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं, गलत लोगों की कंपनी में आके गलत आदतें ना सीख जाएं। आप सोचिए, अगर एक सुरक्षित और प्रेम भरा समाज होगा तो क्या हम बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम निश्चिंत होकर अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन ये समाज हम लोगों से बना है, ये अपने आप तो अच्छा नहीं बनेगा।
0: इसलिए हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना चाहिए।
1: जैसा हम चाहते हैं कि समाज हो, हमें वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है ना कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, बजाय कि वो जो सुनते हैं वो करेंगे। तो यही सबके लिए है। अगर हम चाहते हैं समाज में प्रेम फैले, सब मिलजुल के रहें, तो ये हमें अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा। परिवार में हम करेंगे, बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, घर के बाकी सदस्य भी यही सीखेंगे, और फिर जब वो बाहर जाएंगे तब तक वो इनकी आदत में शुमार हो चुका होगा। तो फिर वो सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा परिवार में करते हैं, और निसंदेह फिर हमारा समाज एक शांतिपूर्ण, एक प्रेम भरा समाज बन जाएगा, जो हमें बिल्कुल अपने परिवार की तरह लगेगा। चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे घर के बाहर हैं, हमें एक जैसा फील होगा। हमें ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ चीजों को जबरदस्ती फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो हम सबके बनाए हुए हैं और हम सबके लिए हैं। तो वो एक इक्वालिटी आ जाएगी हर चीज के अंदर। तो ये बहुत ही एक, जैसे सत्ययुग हम जिसको कहें, वो वाला माहौल हो जाएगा। ये हमारे ही हाथ में है कि हमें कैसा समाज बनाना है,
0: क्योंकि परिवारों का समूह ही तो समाज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, परिवारों का समूह ही समाज है, और उस पर समाज को बनाने वाले हम लोग ही हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें खुद को और अपने आने वाली जनरेशंस को कैसा समाज देना है, इस देश को कैसे नागरिक देने हैं। तो हमें उसी जिम्मेदारी के साथ काम करना है इस समाज को एक अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए हम छोटे छोटे दैनिक परिवर्तन कर सकते हैं, कि जैसे अगर हमें घर में या घर से बाहर सफाई रखने की आदत नहीं है तो हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। अगर हमें क्रोध आता है तो हम उस क्रोध पे थोड़ा काबू पा सकते हैं, घर में भी और घर के बाहर भी। बिल्कुल इतने माइनर चेंजेस हैं ये, जिनका हमें पता भी नहीं चलेगा। ना हमें इनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, ना इनके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऐसा असर दिखाएगा, एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसकी हम कल्पना तो जरूर करते हैं लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं है। वो हमारी कल्पना सच में बदल जाएगी अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में शामिल कर लें, और औरों को भी प्रेरित करें कि वो भी यही सब करें।
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। छोटे बदलाव वाकई बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। हर किसी को अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। अब हम इस खूबसूरत बातचीत को थोड़ा संगीत से जोड़ते हैं। कविता जी, आपका पसंदीदा गाने के साथ कुछ और पल हम एक साथ बिताएं, आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जो हमारे जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकते हैं। कविता जी, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पुराने घरेलू नुस्खे कितने प्रभावी हो सकते हैं। क्या आप हमारे साथ कोई ऐसा नुस्खा शेयर करना चाहेंगी जिसे आप खुद कभी इस्तेमाल किया हो और जो बहुत फायदेमंद साबित हुआ हो?
1: किरणी जी, अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो जो हमारी रसोई है ना, वो खजाना है नुस्खों का। उसमें आपको अधिकतर हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। वो तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो हमें एकदम से आराम देती है। जो घरेलू नुस्खे हैं वो थोड़ा स्लो आराम देते हैं, लेकिन उनका फायदा ये है कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो अगर हमारी रसोई के अंदर आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। अब आजकल जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अक्सर हमें खांसी की शिकायत हो जाती है, तो मैं आपसे एक छोटा सा नुस्खा शेयर करूंगी जो जिसके लिए ना आपको कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। इसके लिए हमें केवल दो चीजों की जरूरत है, एक है हल्दी और एक गुड़, जो बड़ी आसानी से हम सबकी पाकशाला में मिल जाता
0: जी।
1: है। तो आपने करना क्या है, बराबर मात्रा में हल्दी और गुड़ लेकर अच्छे से मिला लेना है और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। गुड़ क्योंकि मीठा स्वाद होता है तो इसको बच्चे बड़े हर कोई ले सकता है। जब भी खांसी हो इस गोली को, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको मुंह में रखें और चूसते रहें, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं तो इनका कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप इसको दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं। और छोटे बच्चे हैं, अगर वो नहीं लेते तो आप उनको रैपर में लपेट के टॉफी की फॉर्म में भी उनको दे सकते हैं। उससे क्या होगा, डबल फायदा होगा, उनको टॉफी का स्वाद भी मिल जाएगा और उनकी खांसी में भी आराम आ जाएगा।
0: बहुत अच्छा नुस्खा, क्योंकि हल्दी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। ये कई बीमारियों को जैसे कैंसर तक को हल्दी ठीक करती है। कविता जी, ये नुस्खा तो बिल्कुल ही शानदार है। यहाँ हमें याद दिलाता है कि पुराने समय के इन छोटे छोटे उपायों में कितनी ताकत होती है। अब इन चमत्कारी नुस्खों के बीच एक और चमत्कारी चीज है, वो है संगीत। तो क्यों ना हम इस जानकारी पूर्ण पल को और भी खास बनाने के लिए आपके पसंदीदा गाने के साथ इसे और भी खूबसूरत बनाए।
1: गाने तो बहुत है लेकिन हम हर पल की कद्र नहीं करते। एक गाना है

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार। अब इस कार्यक्रम का अंतिम भाग, अब हम बात करेंगे एक ऐसी रेसिपी के बारे में जो न सिर्फ स्वादिष्ट हो बल्कि पौष्टिक भी हो। आपने हमें बताया कि आपको ऐसे व्यंजन पसंद है जो सेहत के लिए अच्छे हैं और साथ ही खाने में भी मजेदार है। क्या आप हमें अपनी पसंदीदा पौष्टिक और स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में बताना चाहेंगे?
1: ज़रूर किरणी जी, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं कुछ कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं बच्चों को हेल्दी खिलाऊँ। सिर्फ बच्चों को नहीं, घर के सभी सदस्यों को हेल्दी भोजन खिलाऊँ जिसमें उनको पौष्टिकता मिले और बाहर से बनी चीज़ों से उनका जो एक अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। मीठे की क्रेविंग अक्सर हम सबको रहती है, खाना खाने के बाद मन करता है कुछ मीठा खाएं, लेकिन आजकल क्योंकि सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हमें ये डर रहता है कि हमने इतनी शुगर कंज्यूम कर ली है, अगर हम क्रीम की फॉर्म में लेते हैं तो हमने इतना मीठा खा लिया है। तो आज एक रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी गिल्ट फ्री है, आप उसको जी भर के खा सकते हैं, ना आपको एक्स्ट्रा फैट मिलेगा उससे, ना एक्स्ट्रा शुगर मिलेगी और हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि आपको रेसिपी सुन के ही समझ में आ जाएगा। रेसिपी का नाम तो बड़ा कॉमन है, वो है फ्रूट क्रीम, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अलग हैं। अक्सर फ्रूट क्रीम हम फ्रूट्स क्रीम और उसमें मीठा कुछ भी फॉर्म में, चीनी कुछ भी डाल के हम उसको बनाते हैं, लेकिन जो हमारी रेसिपी है इसके अंदर आप फ्रूट्स लीजिएगा अपनी चॉइस के, उनको बारीक चॉप कर लीजिए। क्रीम की जगह यहाँ पर हम डालेंगे 2-3 चम्मच गाढ़ा दही। दही के अंदर ना तो फैट होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे इसके जितने बेनिफिट्स हैं दही के वो हम सब जानते हैं। और साथ में वैसे तो फ्रूट्स में अपना नेचुरल तौर पे काफ़ी मीठा होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी मीठे की ज़रूरत है तो आप इसमें 1/2 चम्मच हनी डाल सकते हैं या फिर 1/2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं जो चीनी के मुकाबले कम नुकसानदेह है। आप इसको खा के देखिए और यकीन मानिए कि बच्चे जल्दी से नहीं बता पाएंगे कि आपने क्रीम में नहीं बल्कि दही में बनाया है। और फ्रूट्स होने की वजह से पौष्टिक तो है ही है और इतनी फिलिंग रेसिपी है ये, अगर आप इसका एक बोल ब्रेकफास्ट में खा लें तो आई थिंक आपकी ब्रेकफास्ट की नीड को ये एकदम से कंप्लीट कर देता है। आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं और अच्छा फिलिंग और टेस्टी और गिल्ट फ्री रेसिपी है ये। तो मेरी सलाह है कि आप सब इसे जरूर ट्राई करें। जो बच्चे दही नहीं खाते या फ्रूट नहीं खाते उनको खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है।
0: आपकी ये रेसिपी न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन लग रही है। हम सबको यकीन है कि ये डिश घर में हर किसी को खुश कर देगी। कविता जी, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस विचारशील चर्चा से श्रोताओं ने भी कुछ नया सीखा होगा। जीवन के इस सफर में हम सब मिलकर एक सशक्त परिवार और समाज बना सकते हैं। क्यों ना हम सुने आपका एक और पसंदीदा गाना जो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है। इस गाने के साथ हमें वो खास एहसास मिलेगा जो इस पल को और भी यादगार बना देगा।
1: मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ रेडियो वितस्ता का, जो अंबाला कैंट का अपना रेडियो स्टेशन है। मुझे लगता है इस रेडियो स्टेशन के जरिए अंबाला के लोगों को बहुत ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा, वो अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और तो और वो अपने व्यवसाय को और अपनी और विचारधारा को लोगों तक पहुंचा पाएंगे इसके जरिए। भारत जी, किरणी जी का ये बहुत बड़ा तोहफा है अंबाला कैंट को, जिसके जरिए अंबाला के लोग आपस में जुड़ जाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। रेडियो वितस्ता अंबाला का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम के अंत में हमारा संदेश है, कभी रिश्तों में बसी होती है एक ऐसी खामोशी जो परिवार और समाज को जोड़ने की होती है एक कोशिश। जहाँ अपनों का साथ होता है वहाँ ताकत का एहसास होता है। समाज भी उस शक्ति से महकता है जब हर दिल में प्यार का एहसास होता है। रिश्तों के उस प्यारे सागर में हर व्यक्ति एक लहर है। साथ चलने से ही हम समाज को समझते हैं और संवारते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती कविता अग्रवाल। आज का विषय था परिवार और समाज। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आज किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं एक और नई लघु कथा। शीर्षक आप बताइए, ढकोसला कहें या नाटकीय प्यार, ये इच्छा आपकी है। और इस नाटकीय प्यार या ढकोसले की रचना की है अरविंद वर्मा ने। सुनाता हूं अरविंद वर्मा की लिखी हुई ये रचना नाटकीय प्यार। मैंने सुना है एक रात ऐसा हुआ कि एक पति घर वापस लौटा अपने काम से, थका मांदा यात्रा से आया था, प्यासा था, थका हुआ था, आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि पानी ले आ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वो इतना थका था ना कि लेटते ही उसको नींद लग गई। पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही बिस्तर के पास, क्योंकि उठाए तो ठीक नहीं है, नींद टूटेगी, खुद सो जाए तो भी ठीक नहीं है, जाने कब नींद टूटे और पानी की जरूरत पड़ जाए पीने के लिए। उसका पति प्यासा सो गया है ना, इसलिए वो रात भर गिलास लिए खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली, उसने कहा अरे पागल, तू सो गई होती। उसने कहा ये संभव नहीं था, तुम्हें प्यास थी, तुम कभी भी उठ सकती थी, तो तू मुझे उठा लेती। उसने कहा वही मुझसे ना हो सकता, क्योंकि तुम थके हुए थे और तुम्हें नींद भी आ गई थी, तो ये उचित था कि तुम सोए रहो, मैं गिलास लिए खड़ी रहूं, जब नींद खुलेगी तो पानी दे दूंगी और पी लोगी, नहीं खुलेगी तो कोई हर्जा नहीं, एक रात जागने से कुछ बिगड़ थोड़ा ही जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई, जो वहां का सम्राट था ना उस तक भी खबर पहुंच गई। उसने उसकी पत्नी को बुलवाया और कहा कि प्रेम की ऐसी धारा मेरी राजधानी में बहती है और मुझे पता ही नहीं, मुझे प्रेम की इस धारा का सम्मान करना होगा। मैं अभी जिंदा हूं, मेरा फर्ज बनता है कि यदि मेरी प्रजा हमारी संस्कृति में प्राण जीवित रख रही है ना, तो मुझे उसको सम्मानित करना होगा। और सम्राट ने बहुत से हीरे जवाहरातों से उसका स्वागत किया, उसको बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात देकर भेज दिया। अब क्या होता है साहब के पड़ोस की एक महिला इसी बात से बहुत ईर्ष्या करने लगी, जलन हो रही थी उसको, ये कोई खास बात थोड़ी है, एक रात गिलास हाथ में लिए खड़ी रही, उसके लिए सम्राट ने उसको लाखों रुपए के हीरे जवाहरात और पैसे दे दिए, ये भी कोई बात है। उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, आज तुम थके होकर ना घर लौटना, आते ही बिस्तर पर बैठ जाना और पानी मांगना, मैं पानी लेकर आऊंगी, लेकिन तुम आंखें बंद करके सो जाना और मैं खड़ी रहूंगी रात भर, और सुबह जब तुम्हारी आंख खुले ना, तुम ऐसे ऐसे ही वचन कहना जैसे उसके घर वाले ने कहे थे कि तू रात भर क्यों खड़ी रही, तू उठा लेती मेरे को। मैं कहूंगी कैसे उठा सकती थी, तुम तो थके मांदे थे, तो तुम कहना तू सो जाती, तो मैं कहूंगी कैसे सो जाती, तुम्हें प्यास लगी थी और इतनी जोर से ये बात कहना कि पड़ोस के लोगों को भी पता लग जाए, और क्योंकि ये तो हद हो गई जरा रात भर, और किसको पता कि खड़ी भी थी भी को नहीं खड़ी थी, क्योंकि रात ही सोली हो, इसकी झपकी ले ली हो तूने, फिर सुबह उठकर खड़ी हो गई हो। ये बात फैला दी सारे गांव के बीच में, लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन हमें भी तो सम्राट से पुरस्कार लेना है। अब पति थका मांदा वापस लौटा, लौटना पड़ा भाई, जब पति कहे कि थके मांदे हो तो लौटो, लौटना पड़ा, आते ही बिस्तर पर बैठा, कहा प्यास लगी है, पत्नी पानी लेकर आई, पति आंख बंद करके लेट गया, कोई नींद तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी है, जो पत्नी कहती है तो मानना पड़ेगा, और फिर लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात का भी तो सवाल है। अब पत्नी ने सोचा कि बाकी का दृश्य तो सुबह ही होने वाला है, अब रात तो बेकार खड़े रहने से कोई फायदा है नहीं, किसको पता चलता है ये खड़े भी रहे या नहीं खड़े रहे, वो भी सो गई
विलास विलास एक तरफ रखकर। सुबह उठकर उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि पड़ोसियों को पता लग जाए, और पड़ोसियों ने सुना भी। पड़ोसियों ने क्या, पूरे गली मोहल्ले ने सुना, और ये बात सम्राट के कान तक भी पहुंच गई, और सम्राट के द्वार से उसको भी बुलावा आया, बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन जब दरबार में पहुंची ना तो बड़ी हैरान हुई। सम्राट ने कहा, ये जो दो कोड़े लेकर आदमी खड़े, इनको ले आओ, इस औरत के ऊपर बरसाओ कोड़े। जब कोड़े बरसने लगे वो चिल्लाई, ये क्या न्याय है, एक को हीरे जवाहरात और मुझे कोड़े, अरे किया तो मैंने भी वही है जो उसने किया था। सम्राट ने कहा, किया है तूने लेकिन हुआ नहीं है, और होने का मूल्य है, करने का मूल्य नहीं है। जीवन में हर रोज होता है, अगर हृदय में स्पंदन ना हो रहा हो ना, तुम कर सकते हो लेकिन उसे करने से फायदा क्या है, लाभ क्या है। सारे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे कर रहे हैं, धर्म क्रियाकांड है, हो नहीं रहा है, गीता पढ़ी जा रही है, की जा रही है, लेकिन हो नहीं रही है। तुमने सुन लिया कि गीता को पढ़ने वाले पाप से मुक्त हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो गए, तुमने सोचा हम भी हो जाएं, तुमने भी पढ़ ली, लेकिन तुम्हारा पढ़ना उस दूसरी पत्नी जैसा है, तुम परमात्मा को धोखा नहीं दे पाओगे। साधारण सम्राट को धोखा नहीं दे पाए तो वो जब समझ गया कि ऐसी घटनाएं रोज नहीं घटती हैं, और पड़ोस में घट गई, वही घटी, बिल्कुल वैसी ही घटी, ये तो कोई नाटक हो, ये प्यार नहीं है, ये नाटकीय प्यार है, दिखावा है। हर वक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग से की है, किसी और के ढंग से नहीं। हर प्रेमी ने प्रेम अपने ढंग से किया है। कोई मजनू और शीरी और फरियाद उनकी किताब रखकर और पन्ने पढ़कर और कंठस्थ करके कभी प्रेम होता है क्या? ये जीवन कोई नाटक नहीं है। पीछे बैठा कोई आदमी कुछ कहता जाए और आप उसको बोलते जाओ, ये जीवन है, ये जीवन है। अरे भाई ऐसा करोगे ना तो खराब कर लोगे अपने जीवन को। तुम हजार बार गीता पढ़ लो, जैसे अर्जुन ने पूछा था ना, अगर वैसी जिज्ञासा नहीं होगी ना, वैसे दिल से आवाज नहीं आएगी ना, तो जो कृष्ण को सरल हुआ कहना, जो अर्जुन को संभव हुआ समझना, वो तुम्हारे साथ नहीं घट सकता, दोहराया नहीं जा सकता, कुछ भी जगत में दोहराया नहीं जा सकता। प्रत्येक घटना अपने आप में अनूठी है। कितना ही सिर पटक लो और कहो कि मैंने भी तो वैसे ही किया, मैंने भी तो ठीक वैसे ही पालन किया था नियम का, फिर अन्याय क्यों हो रहा है? अक्षरक्ष पालन का सवाल ही नहीं है। अपने ईश्वर को अपने तरीके से भजो। जब अपने तरीके से दिल से भजोगे ना, तो राजा की भांति वो भी आपको उचित सम्मान देगा। नाटक करोगे, ड्रामा करोगे, दिखावा करोगे तो दंड ही तो पाओगे ना। तो अपने नाटकीय प्यार को अगर इस तरह से निभाओगे तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा ही मिलेगा। जब दंड मिलेगा ना, दोष ईश्वर को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मन के मुताबिक नहीं होता ना, तो टूट जाता है दिल, और जब दिल टूट जाता है फिर ईश्वर को दोष देते हुए पता क्या कहते हैं,

0: भारतीय फिल्म इतिहास में कुछ दशक ऐसे हुए हैं जिन्हें किन्हीं खास कलाकारों की वजह से याद किया जाता है। अगर हम 1960 के दशक की बात करें तो यह दशक राजेंद्र कुमार के कारण याद किया जाता है, जिन्हें इस दौर में अपनी सुपरहिट फिल्मों की वजह से जुबली कुमार का नाम दिया गया था। उस दौर की हर अभिनेत्री की इच्छा रहती थी कि उसे राजेंद्र कुमार के अपोजिट किरदार निभाने का मौका मिले।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में एचएस रवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। एचएस रवेल ने ही आगे चलकर राजेंद्र को लेकर फिल्म मेरे महबूब का निर्माण किया, जो उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी।

फिल्म निर्माण के गुर सीखने के दौरान ही राजेंद्र कुमार के मन में अभिनय यानी एक्टिंग की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद एक एक्टर के तौर पर पहली बार उन्हें दिलीप कुमार के साथ फिल्म जोगन में एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला था। यहीं से वो लगातार कामयाबी हासिल करते गए और 1956 में उन्हें फिल्म आवाज में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने महबूब खान की मदर इंडिया में एक अच्छे बेटे का किरदार निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा उन्हें। यह सिलसिला जारी रहा। 1959 में गूंज उठी शहनाई ने उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा दिलाया।

अगले ही साल उन्होंने कानून और धूल का फूल जैसी फिल्में दी, जो लगभग गूंज उठी शहनाई के समय में ही रिलीज हुई थी। वो हमेशा अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने के इच्छुक रहते थे, मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक अलग तरह की इमेज में बांध कर रख दिया। 60 के दशक में उन्होंने आस्क पंछी, ससुराल, हमराही, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, जिंदगी, संगम, आरजू, सूरज जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी।

उनकी सफलता के चढ़ाव के इस दौर के बाद एकदम इसमें उतार आया और उनकी अमन झुक गया आसमान, पालकी, साथी और शतरंज जैसी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान उन्होंने गवार, गांव हमारा शहर तुम्हारा और तांगे वाला जैसी औसत दर्जे की फिल्में की, मगर उन्हें पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली।

70 के दशक में जब राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई थी, तब राजेंद्र कुमार अभिनीत और राजकुमार कोहली की फिल्म गोरा और काला आई और सुपरहिट साबित।

सन 1980 के बाद राजेंद्र कुमार ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे कुमार गौरव का करियर बनाने के लिए दिया। 1981 में उन्होंने अपने बेटे को लेकर फिल्म लव स्टोरी का निर्माण किया जो सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को लेकर नाम, जुरत और फूल जैसी फिल्मों का निर्माण किया, मगर कुमार गौरव अपने पिता की विरासत को आगे न ले जा पाए।

उनके दौर की फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए राजेंद्र कुमार भी उतने ही बड़े ट्रेजेडी किंग थे जितने बड़े ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को माना जाता है।

सुनते रहिए हमारी प्रसारण दिल से। अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे प्रोग्राम्स के बारे में अपनी खूबसूरत राय से हमें नवाजते रहिए। सुनते रहिए हमारी नशरियात दिल से।

क्या आप जानते हैं मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। मीना कुमारी का असली नाम माजबीन था और माजबीन सबसे छोटी बेटी थी खुर्शीद और मधु के बाद। इनके वालिद अली बख्श गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। माजबीन की पैदाइश के फौरन बाद अपनी गुर्बत की वजह से अली बख्श ने अपनी इस छोटी लड़की को किसी

मुस्लिम घराने के हवाले किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद महजबीन को वापस अपने पास ले आए। अली बख्श की फिल्मी दुनिया से पहले ही से वाबस्तगी थी। वो शायर थे, हारमोनियम बजाने के अलावा म्यूजिक टीचर भी थे। अली बख्श ने एक छोटा सा रोल अदा किया था, फिल्म थी ईद का चांद। फिल्म शाही लुटेरा के लिए संगीत भी तैयार किया था। प्रभावती देवी अली बख्श की दूसरी पत्नी थी और मीना कुमारी की दादी हेम सुंदरी ठाकुर टैगोर खानदान से ताल्लुक रखती थी। हेम सुंदरी ठाकुर की बेटी यानी अली बख्श की दूसरी पत्नी प्रभावती देवी स्टेज एक्ट्रेस के अलावा उस जमाने की बेहतरीन और उम्दा डांसर थी। अली बख्श के साथ शादी के बाद प्रभावती देवी ने इस्लाम मजहब अपना कर अपना नाम इकबाल

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सही हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है

हम तो मुसाफिर ही मंजिल की तलाश में भटकते हैं, जानते ही रास्ते दुश्वार है, कठिन है राहें, फिर भी सफर है जारी। पीड़ाओं के सहरा में कितनी जिंदगियां भटकती हैं समझना बड़ा मुश्किल है, पर समय की रफ्तार के साथ शायद इस भटके हुए मुसाफिर की तलाश खत्म हो, ताकि एक नई सुबह का आगाज हो सके।

फरिश्तों के इस मौसम में कुछ अनकहे सवालात, कुछ अनसुनी बातें रह गई पीछे, शायद यह सोचकर कि हम हदे परवाज को छूने की नाकाम कोशिश करते रहे, करते रहे अपनी तमन्नाओं, अपनी आरज़ुओं का बेसब्री से इंतजार, बुलंदियों में अपनी परवाज लिए अपने आसमां को तलाशने की कोशिश करते रहे।

आशाओं और उमंगों के साथ हम अपनी परवाज लिए आपके दिलों को छूने की जुरत तो जरूर करेंगे, पर धीरे धीरे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिलों में बसती है धड़कने और धड़कने आपकी याद दिलाती हैं।

मुस्कुराती सुबह परिंदे अपनी परवाज लिए आसमां की बुलंदियों को छूने की कोशिश में मगन, मदमस्त हवाओं का झुरमुट जहां तक नजर दौड़ाई, उम्मीदों के सागर उमड़ आए हैं। लहरें इन खामोश साहिलों को छूने को बेकरार हैं। यहां खुशबुओं के मेले लगे हैं। उदासी आज कहीं गुम हो गई है। तेरी उंगली पकड़कर मैं क्यों न तुम्हें इंद्रलोक की सैर कराऊं, जहां शायद अप्सराएं तुम्हारी इबादत करें, तुम्हारे बदन से लिपट जाए और फरिश्ते दुआओं में अपने हाथ उठाएं, ताकि एक नई सुबह की शुरुआत

और मैं चलता रहा उस मोड़ तक जहां तुम मुझे तन्हा छोड़ आए थे। गर्चे ये सफर आज भी मुझे मेरे हर उस बीते लम्हे को भुलाने का हौसला देता है, मगर तुम्हारी मासूम बेबस अदाओं का एहसास कैसे भुला पाऊंगा, जबकि हमारे रिश्ते अब पिंजरों में कैद हैं। फिर भी उन रिश्तों की खुशबू हमारे दरमियान के फासलों को कम करने में हमेशा मदद करती आ रही है।

0: दोस्तों, आज का मिली जुली गीतों का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये सफ़र आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्ते।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान हैं कश्मीरी फोक सूफी गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती नीरजा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने। रिकॉर्ड निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपुरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज कार्यक्रम गुप्तगू का एक और अंक। गायन एक सामान्य शब्द है जो संगीत गाने की क्रिया को दर्शाता है, जबकि सूफी गायन एक विशेष प्रकार का भक्ति संगीत है जो सूफी संतों के आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। सूफी गायन में सूफियों की रहस्यात्मक भावनाओं, प्रेम, विरह और भक्ति को व्यक्त किया जाता है। कवाली सूफी संगीत का एक रूप है, लेकिन इसमें गजल, तराना और धमार जैसे अन्य रूप भी शामिल होते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5 समर्पित है उन सुरों को जो दिल को छूते हैं, आत्मा को मंत्र मुग्ध करते हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर की गायिका, एक सूफी फनकार और खास तौर पर ये आवाज जो कश्मीर घाटी की सरजमी से उठकर देश और दुनिया के दिलों तक पहुंची है। स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान का। स्वागत है श्रीमती नीरजा पंडित जी, आपका आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आपने विदस्ता रेडियो पे मुझे आमंत्रित किया है और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सुरमई यात्रा की। सबसे पहले नीरजा जी, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में आपके आने से। आज हमारा ये स्टूडियो पावन हो गया है।
1: नहीं, मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज मौका मिला है आपके इस पवित्र जगह पे, आपके स्टूडियो में आने का एक अवसर मिला है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें ताकि हमारी श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, नीरजा पंडित के नाम से जानी जाती हूँ। पहले मैं नीरजा मुंशी थी शादी से पहले, और कश्मीर में थी। कश्मीर में एक छोटी सी जगह है श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे, जहाँ की हमारी शिव योगिनी ललेश्वरी है, उसी जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ की हवा खातून भी है
0: जी।
1: और पामपुर उस जगह का नाम है, और पामपुर बहुत पॉपुलर है, फेमस है काफी चीजों के लिए, जिसमें केसर उगता है
0: जी।
1: तो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सब जानते हैं, तो मैं उस जगह को बिलोंग करती हूँ।
0: सभी श्रोताओं को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रेडियो वितस्ता हमेशा कश्मीर के साथ जुड़ा है, क्योंकि इसका जो वजूद है वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने श्रोताओं को कश्मीर की उन हसीन वादियों से और वहाँ की जो खास बातें हैं उनके साथ आपको जोड़ूं, और आप हमारे साथ जुड़े और हम रेडियो वितस्ता के माध्यम से आपकी जिंदगी के हम सफर बन पाए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पहले मेहमान हैं वो गायक जिन्होंने मंचों, फिल्मों और एल्बम्स में अपनी आवाज से जादू बिखेरा है। सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि संगीत में आपका सफर कैसे शुरू हुआ।
1: एक्चुअली मुझे संगीत का जो एक हेरिटेज होती है ना, वो मुझे मेरी माँ से मिली है
0: जी।
1: और उनको उनकी माँ से मिली थी
0: जी।
1: तो मेरी माँ जब कश्मीर में फंक्शंस में गाया करती थी, फैमिली फंक्शंस में, मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको देखती थी और मैं भी इंस्पायर होती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, बहुत छोटी थी, और मुझे वो आकर्षण होता था उनके संगीत की तरफ, और मैं उनके साथ बैठ के उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी, उन गानों को गाने की कोशिश करती थी। हमारे कश्मीरी फोक म्यूजिक में तुम्बक नर एक इंस्ट्रूमेंट है जो शादियों में बजता है, जैसे ढोलक है पंजाबी में, तो वैसे वो तुम्बक नर मैं कोशिश करती थी बजाने की। छोटी सी थी बट एक जिद मेरी थी, वो मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं मम्मी के बगल में बैठ के उन गानों को रिसाइट करने की कोशिश करती थी और गाती भी थी। फिर छोटे से ही शुरुआत हो गई थी मेरी, और फिर स्कूल के फंक्शंस में गाना गाना, पार्टिसिपेट करना, और उसमें ये था कि कश्मीर रेडियो से बजते थे बहुत अच्छे अच्छे गाने उन दिनों, लाइट म्यूजिक, फोक म्यूजिक तो था ही था, लाइट म्यूजिक में हमारे वरिष्ठ जो गायक थे, जिसमें कैलाश मेहरा साधु जी हमारे, वो सारे मेरे गुरु समान हैं, और शमीमा देव जी थी, आरती तिकू जी थी, कई सारे सिंगर्स थे जो गाया करते थे, और उन गानों को भी मैं सुन सुन के रिसाइट करती थी और फंक्शंस में गाती थी स्कूल के, वहां से मुझे एनकरेजमेंट मिलती रही और सब बोलते थे तो बिल्कुल वैसे ही गाती, और बचपन में एक ग्रेस्पिंग पावर भी होता है
0: जी।
1: तो उन गानों को मैं एग्जैक्टली उसी ट्यून में उसी तर्ज में गाने की कोशिश करती थी और वो अच्छा लगता था सबको। और फिर एनकरेजमेंट मिलती रही टीचर्स से कि नहीं तुम सब्जेक्ट ले लो, बिकॉज कश्मीर में सब्जेक्ट नहीं था स्कूल लेवल पे। तो जब 10th पास किया फिर मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया कॉलेज में, और अपने गुरुजी से पंडित शंभुनाथ सोपरी जी जो कश्मीर के प्रख्यात म्यूजिशियंस में से रहे हैं, ही इज द मास्टर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर कॉलेजेस में, कॉलेज लेवल पे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने सब्जेक्ट लिया और उनसे सीखना भी शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है ना संगीत की, बस वहां से एक सीखने का सफर शुरू हो गया। फिर साथ साथ रेडियो टीवी वो सब भी
0: मतलब साथ साथ चलता
1: साथ रहा। साथ चलता रहा।
0: क्या मैं मानूं आपको ये विरासत में संगीत और जो संगीत के साथ आपकी जिंदगी चल रही है, जो आपकी संगीत की यात्रा है
1: जी,
0: तो क्या हम माने कि ये आपको विरासत में मिली है?
1: विरासत में तो मिली थी, हमारी फैमिली में सब गाते हैं, सबको भगवान ने वो वरदान दिया है गाने का,
0: सरस्वती माँ का आशीर्वाद।
1: पर मुझे एक जब मैं वही मैं आपको बोल रही थी कि मैं

0: की कृपा रही और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद रहा और मैंने कॉलेज टाइम से ही फिर शुरू किया सीखना क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड सब्जेक्ट भी लिया और प्लस रेडियो में ऑडिशन करके शुरू किया मैंने एक प्रोफेशनल सिंगिंग, प्रोफेशनल सिंगिंग जी। तो बहुत हार्ड वर्क होती है, तभी जब हम इसमें पूरा डिवोट करेंगे अपने टाइम को। विरासत तो थी बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट और उसमें हार्ड वर्क।
1: आपने अपने इस सफर को खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक बनाया है।
0: फिर मुझे ये भी नहीं पता कहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है, लिटरली लगता है जो मुझे पाना चाहिए था। बट ठीक है, डेस्टिनी में जितना लिखा होता है वो मिलता है हमको। ये था कि रेडियो टीवी के करने से काफी भजन जी के अंडर हम काम करते थे, भजन सोपोरी जी जो हमें, मेरे गुरुजी भी है, मेरे गुरु भाई भी है, वो सब जानते हैं उनको, इंटरनेशनल वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट रहे हैं वो संगीत के, संतूर माएस्ट्रो। एंड देन कश्मीरी फोक म्यूजिक को उन्होंने कैसे रेवोल्यूशन लाया और उन धुनों को लेके मैं इंस्पायर होती थी। उनका कनेक्शन मेरे साथ है, वाई, बिकॉज मैं उन्हीं धुनों को सुन सुन के इंस्पायर होती रही और मैं अट्रैक्ट होती रही टुवर्ड्स दिस लाइट म्यूजिक, कश्मीरी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, जो मैं फिर शुरुआत भी हो गई रेडियो कश्मीर से और दूरदर्शन से।
1: हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे श्रोताओं से आज मुखातिब है। आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे और श्रोताओं की जो जिज्ञासा है, उम्मीद है कि उन सारे सवालों के जवाब हम नीरजा जी से लेंगे। पर मैं चाहूंगा कि हमारी श्रोता इंतजार कर रहे होंगे आपके कंठ से सुनने के लिए।
0: जरूर जरूर जी। मैं एक गुरुस्तुति से ही शुरू करूंगी, शुरुआत उन्हीं से मैं करना चाहूंगी।
1: जी जी।
0: एक छोटी सी सूफी भजन से, पॉपुलर भजन है ये, नुसरत फतेह अली जी ने गाया है, तो मेरा जबरदस्त फेवरेट भजन है ये सूफी भजन।

0: बहुत खूब निर्जा जी, आपने अभी कश्मीर की बात की, कश्मीर के बारे में आपने बोला, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी प्रांत में रह रहे हो, हम सब के लिए माँ बोली कितनी महत्वपूर्ण है? क्या हमारी पहचान माँ बोली से ही हो सकती है? हमारे लिए माँ बोली को बचा के रखना, उसका संरक्षण करना कितना जरूरी है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो किसी प्रांत की बात हो?
1: भाषा एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी आपको अपने रीजन का कोई दिखता है, जब तक आप उसको अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि वो मेरे प्रांत का है या कहाँ का है। जब अपनी भाषा में हम बात करते हैं किसी भी जगह पे हो हम, तो एक अलग ही अपनापन लगता है
0: जी।
1: तो ये भाषा का एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है
0: जी।
1: भाषा नहीं तो अंग्रेजी सब बोलते हैं, तो फिर हमारे में और दूसरी जगह से होंगे या प्रांत से होंगे, जो अपनापन हमारी भाषा में बात करने से होता है, तो वो हमको किसी और अंग्रेजी में, नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं आएगा
0: जी।
1: वो तो सबको करना ही पड़ता है, बिकॉज काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए हमको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वो सब तो करना ही पड़ेगा काम चलाने के लिए। बट जब हमको अपनेपन की बात आती है तो वहाँ पे हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा से ही हमारी पहचान है। और कश्मीर से निकलने के बाद मैं मुंबई चली गई मेरी शादी के बाद
0: जी।
1: तो हमारे पास कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड मेरा, जो मैंने कश्मीर में रेडियो गाने गाए थे, टीवी पे गाने गाए थे,
0: सब कुछ छूट गया था,
1: कश्मीर में ही छूट गया था। और उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि संगीत मैं कर ही रही थी, कश्मीरी म्यूजिक तो मेरा था ही वहाँ पे, तो उसको मैं कैसे बचाऊं क्योंकि छूट गया, और आगे की जनरेशन तक कैसे हमारी ये मातृभाषा आगे जाएगी
0: जी।
1: तो मुझे म्यूजिक का एक बहुत बड़ा माध्यम लगा, म्यूजिक के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं भाषा को। तो मैंने एल्बम्स बनाने शुरू किए, उसको री रिकॉर्ड किए मैंने, जो कश्मीर के पॉपुलर गाने थे जो मैंने भी गाए थे और जो वहाँ के बाकी सिंगर्स ने भी गाए थे, चूंकि रिकॉर्ड कुछ था नहीं अपने पास, तो उसको रिवाइव करने के लिए मैंने काफी मेहनत की, एफर्ट लगाया और उसको रिकॉर्ड किया। और तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर सब जगह जगह मैंने भेजी वो सीडीज, जहाँ जहाँ हमारी कश्मीरी बरादरी थी उनको भेजा मैंने, उनको दिए मैंने सुनने के लिए। और जो बच्चे पैदा हुए थे, जो बड़े हो रहे थे, तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हम कश्मीरी गाने चलाते रहेंगे घरों में, हमारे जो रीजनल गाने हैं, तो हमारे बच्चों के कानों तक पहुंचती है चीजें सुनने को, फिर उनको फिर वो एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके थ्रू उनकी भाषा उनको समझ में आने लगेगी। मैं छोटी सी एग्जाम्पल अपनी ही दे दूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने पहले कहा कि मेरे को भाषा का कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत छोटी थी, मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड से ही इनफैक्ट शुरू किया था। जो मैं गाने गाती थी शमीमा आजाद जी के, कैलाश मेहरा साधु जी के, आरती टिक्कू जी के, मुझे सिर्फ ट्यून पकड़ती थी, भाषा मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आती थी। बट जब मैं प्रोफेशनली इसको करने लगी, धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया, मैं 11th में थी, छोटी थी, क्लासिकल तो सीख ही रही थी, मगर ये पोइट्री मुझे किसी ने सिखाई नहीं, ये मुझे अपने आप ही फिर इसकी समझ आ गई करते करते करते करते। जब मैंने गाने गाने शुरू किए और मेरी मैच्योरिटी लेवल तो धीरे धीरे फिर इंसान की आई जाती है, और मैंने समझा कि नहीं, ये तो फिर करते रहने से, सुनते रहने से, और जितना इसके साथ जुड़े रहो इन गानों के साथ, वो समझ आ गई मुझे। तो मुझे लगा कि ये म्यूजिक के फॉर्मेट में बच्चे सुनेंगे गाने, कश्मीरी गाने चलते रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरा बेटा है, वो भी बचपन से मेरे साथ करता रहा है, सीखता रहा है, सुनता रहा है, और मेरे ये एल्बम्स पे काम उसने भी किया जब वो बड़ा हो रहा था
0: जी।
1: सिंस उसका म्यूजिक ही उसने अडॉप्ट किया है, म्यूजिक में ही है वो। बट उसको ये बात, उन दोनों बच्चों को, मेरी डॉटर भी है, ये गाने सुनते सुनते उनको कश्मीरी भाषा मैक्सिमम आ गई, जबकि हम घर में भाषा बोलते हैं कश्मीरी, बट म्यूजिक के थ्रू उनको ज्यादा हेल्प हो गई
0: जी।
1: तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा माध्यम है हमारा संगीत, अगर हम कश्मीरी गाने गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे रेडियो पे, उसको एडॉप्ट करेंगे, तो हमारी भाषा जल्दी पकड़ सकते हैं बच्चे।
0: निजा जी, आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया है और अलग अलग संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, पर अभी मैं इसी बात पर रहना चाहूंगा, कश्मीरी भाषा है वो हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम उस कश्मीरी भाषा को समझ पा रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लल दद की बात करूंगा, क्योंकि उनके जितने भी वाक है वो कश्मीरी में ही है
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप बताएं।
1: जी, हमारे कश्मीर में तो काफी वरिष्ठ सूफी सेंट्स रहे हैं और बहुत जबरदस्त लेवल के ऊंची अवस्था में रहने वाले सेंट्स रहे हैं, पीरवर रेशवर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारे गुप्त संत भी थे जो एकदम हाई लेवल के, उसमें से ललेश्वरी भी थी वन ऑफ देम, और वो शिव योगिनी थी, उनको कहा जाता था ललेश्वरी माता। तो मैं उसी जगह को बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से उनका वो सब सुना है, मैंने देखा तो नहीं है बट सुनते हुए, फिर उनके वाक सुनते हुए, सुने भी हैं सीखे भी हैं, तो काफी सारे वहाँ के हैं सूफी पोइट्स हैं और संत परंपरा से जुड़े भी काफी हमारे संत हैं। तो मैंने कई गाए भी हैं, और अभी आपने ललेश्वरी की बात की है तो मैं ललेश्वरी का वाक आपको सुनाते हुए फिर एक सूफी गाना ही सुनाऊंगी। सूफी मतलब फिलोसोफिकल पोइट्री है जो डोलवाल साहब का है। डोलवाल साहब बहुत बड़े शायर थे, कंपोजर थे, सिंगर थे उस जमाने के, तो उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है मेरे एक एल्बम में, उसका नाम है रिश्वर
0: जी।
1: तो उसमें सूफियों के ही गाने हैं उस एल्बम में, तो ये भी एक गाना है। मैं ललवाक से शुरू करूंगी।

0: मुझे भी उस बचपन के दौर में लिया और उस कश्मीर की वादियों में, उन गलियों में आपने मुझे पहुंचाए इस गीत के जरिए जो आपने अभी गाया मेरी और आपकी माँ बोली में। श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि माँ बोली हमारी पहचान है, हमें अपनी माँ बोली को बचा के रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, क्योंकि हमारी पहचान हमारी मातृबोली से ही होती है। जो हम अपनी माँ से सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है, और चाहे हम दुनिया के सभी भाषाएं बोलें पर हमारी पहचान हमारी मातृभाषा होती है। इस चर्चा को आगे ले जाते हैं और बहुत से हमने बातें करनी है नीरजा पंडित जी के साथ। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने अलग अलग भाषाओं में गीत गाए हैं
1: जी।
0: तो जो हमारा प्रांत है इसमें पंजाबी बहुत ज्यादा बोली जाती है और हरियाणवी के साथ साथ पंजाबी गीत गाए और सुने जाते हैं
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर के बाद आप एक पंजाबी गीत, कोई सा भी आपके मन का हो, वो हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जरूर जरूर।
0: नीरजा जी, आपसे अगला प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि सूफी संगीत का महत्व हमारे जीवन में क्या है, आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: सूफी मतलब सूफी संगीत तो अभी काफी प्रचलित है। मैं तो ये कहूंगी कि संत परंपरा से हम जुड़े हुए रहे हैं हमेशा। हमारी जितनी भी पोइट्री है वो सब संतों की वाणी है, वो सब सूफियों की वाणी है। तो वही गागा के वही हम यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, उनको ही, उन्हीं कलामों को गागा के। तो वो हमारे जीन्स में ही है, सूफियाना म्यूजिक और सूफी म्यूजिक, जो भी म्यूजिक नहीं होता है लिरिकली, मतलब वो पोइट्री जो वहाँ की है
0: जी।
1: ये दुनिया में मुझे लगता है, मैं कई जगह जाती रही हूँ, बाहर इंटरनेशनल शोज के लिए गई हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी कश्मीरी पोइट्री इतनी रिच है, हमारी हेरिटेज इतनी रिच है, जो हमारी वहाँ की परंपरा है रिचेस्ट मुझे लगती है हमारी जो भाषा है, और जितने भी हमारे कलाम हैं कश्मीरी, चाहे वो सूफियों के हैं चाहे वो संतों के हैं, तो मैं उस परंपरा को बिलोंग करती हूँ। ये मेरी भाग्य की बात है कि मैं कश्मीर से जुड़ी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो हमारे खून में ही दौड़ता है वो सब पोइट्री जो हमारी है। जैसे मैंने अभी ललेश्वरी जी की बात करी, एक मिस्टिक पोइट्री है वो, तो आम भाषा नहीं है। तो काफी इनको गाते गाते आपको एक अलग ही रूहानियत महसूस होती है, अंदर एक अलग ही पीस मिलता है आपको, लाइफ के बारे में समझ आती है, फिलोसफी समझ में आती है। और इसमें कोई दीन कोई धर्म की बात ही नहीं है, इसमें एक यूनिवर्सल बात है, एक लाइफ की बात है, एक लाइफ की फिलोसफी होती है इन पोइट्रीज में। तो ये बिल्कुल रिलीजन के परे होती है ये चीजें, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है ऐसी चीजें जो फिलोसफिकल चीजें हैं। उसमें रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे गुरुओं के संग में रह के और उनका आशीर्वाद पाते पाते मेरा ज्यादा झुकाव इन्हीं चीजों की तरफ रहा है, मैक्सिमम झुकाव। तो मेरे गुरुजी है, मेरी गुरु माँ है, मेरे माता पिता, सबका आशीर्वाद उनका है, और मैं इस चीज को अलग लेवल पे महसूस करती हूँ इन चीजों को गाते गाते
0: जी। जी, तो जैसे आपने कहा, तो आज के दौर में सूफी संगीत की प्रासंगिकता जो है वो आज भी है, पहले भी रही है और आगे भी रहती रहेगी,
1: रहना चाहिए। बिकॉज मैं अभी यही बोल रही थी कि ये फिलोसफी लाइफ की, ये पोइट्री जो है ये इतनी रिच है, ये असलियत सिखाती है हमको जिंदगी की, इसमें कैसे चलना है। तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा भविष्य हो सकता है अगर वो इस चीज को समझे और इस चीज को आगे, इस परंपरा को आगे चलाएं, ये पोइट्री को गाएं बजाएं और समझे।
0: और कोई यादगार मंच अनुभव आपका?
1: वो तो बहुत सारे हैं, जैसे इवेंट्स में मैं शोज करती रही हूँ काफी सारे, तो पंजाबी भी गाया है, तेलुगु गाया, काफी लैंग्वेजेस में गाया है, गुजराती, मराठी, राजस्थानी फोक मैंने काफी गाए हैं, फिल्मों में गाया राजस्थानी, इवन काफी सारे मराठी में भी गाया है, तो संस्कृत में गाया है, तो वो सब श्लोक्स वगैरह और दुर्गा कवच वगैरह मैंने किया था, तो वो तो चलता रहा है, कमर्शियल काम तो चलते रहे हैं, बट ये है कि पंजाबी भी मैंने गाया है जी।
0: तो आप एक पंजाबी कुछ हमारे श्रोताओं के लिए करें?
1: जरूर, क्योंकि मैं आज हरियाणा में हूँ, तो यहाँ के जो श्रोता है उनके लिए मैं एक छोटा सा, ये भी मेरा फेवरेट सूफी गाना है
0: जी,
1: नुसरत फतेह अली जी का है
0: जी।
1: क्योंकि मैं इन सारे लेजेंड्स को सुनती हूँ, उनसे सीखती हूँ, जितने भी सारे हमारे मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग है, मैं रोज ही सीखती हूँ कुछ ना कुछ, तो ये एक मेरा फेवरेट सूफी गाना है।
0: Please.

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। कार्यक्रम चल रहा है गुफ्तगू, और आज हम हमारे देश की और विश्व प्रसिद्ध गायिका से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ है श्रीमती नीरजा पंडित जी, जो मुंबई से खासकर हमारे अंबाला के श्रोताओं के लिए इस समय स्टूडियो में है और बात कर रही है। नीरजा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के समय में संगीत में जो बदलाव आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, संगीत ही नहीं, हमारी जिंदगियों में भी बदलाव तो आता ही है
0: जी।
1: और कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हर चीज में बदलाव आता ही है, तो हमारी जिंदगियों में भी बदलाव आया है। तो जैसे हमारे संगीत को लेके मैं बात करूंगी, काफी कुछ चेंजेस आ गई, बिकॉज जो जनरेशन अभी बड़ी हो रही है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में है, म्यूजिक के फील्ड में है या एक्टिंग के फील्ड, किसी भी फील्ड में है, तो बदलाव तो आना ही है, मगर वो बदलाव भी अच्छे ढंग से आए तो बहुत अच्छा है,
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: करेक्ट करेक्ट, हाँ जी हाँ जी। तो उस बदलाव को हमको देखना है, सुपरवाइज करना है। अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमारा क्रिएटिव वर्क है कुछ, या जैसे मेरे म्यूजिक को लेके मैं बात करूंगी कि जब कुछ नया गाना रिकॉर्ड होता है, जैसे अभी सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर्स है, म्यूजिक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ संगीतकारों में से हैं
0: जी।
1: तो उनके साथ कश्मीरी फोक म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, अपने मर्चेंट रिकॉर्ड्स उनकी म्यूजिक कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक कंपनीज, उसमें कश्मीरी म्यूजिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो ओरिजिनल म्यूजिक भी रिकॉर्ड करते हैं। तो उनका भूमि एक एल्बम आता है हर साल
0: जी,
1: उसमें वो 10 गाने रखते हैं, और वो अलग अलग रीजन्स को लेके
0: बनाते
1: हैं, अलग अलग भाषाओं में भी होता है, और फिर क्लासिकल बेस्ड, डिवोशनल, हर तरह का गाना वो रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज करते हैं। तो कश्मीरी फोक म्यूजिक को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरा कहना ये है कि वो मॉडर्न स्टाइल भी है, और आज की यूथ जो है, जो उसको लाइक करे, उसके हिसाब से भी बना है, बट एट द सेम टाइम कश्मीरी गाना उन्होंने लिया है, जो मैंने अभी गाया आपके लिए, नाज़नीन यार मैं ये मुलाकात, ये पॉपुलर गाना रहा है कश्मीर का, ये सब जानते हैं ये गाना, तो काफी पुराना ट्रेडिशनल गाना रहा है, तो इसको उन्होंने ले लिया और कश्मीर से सिंगर को बुला के, एंड देन एक यंग बडिंग आर्टिस्ट राज पंडित, उसको लिया उन्होंने, और दोनों का कॉम्बिनेशन में ये गाना बन गया। जब गाना बना तो शुरुआत भी वैसी हुई, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसका ग्राफ ऐसा बन गया गाने का कि गाना एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा गाने में, पर वो बनाने का जो तरीका था वो प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से, वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के हिसाब से बना है पूरा, बिकॉज वो रीजनल लोगों के लिए ही नहीं था, वो ग्लोबल लेवल पे वो भूमि एल्बम आता है
0: जी।
1: तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंचती है वो चीज, पूरे ग्लोब में पहुंचती है वो चीज, जो उनका वो प्लेटफॉर्म है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज प्रोडक्शन है उसकी, तो वैल्यू उसकी। तो उसमें वो गाना उन्होंने जब बनाया तो उसको इतना सुंदर तरीके से उसको एलोबरेट किया है म्यूजिकली, म्यूजिक ट्रीटमेंट जो उसमें है, आप सुनेंगे, आपने सुना भी होगा
0: जी।
1: तो वो लगता नहीं है कहीं दूर दूर से कि वो गाना खराब हुआ है या डिस्टॉर्ट हुआ है, हमारी भाषा को कुछ उधर उधर किया है, नहीं, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से उसको उन्होंने बनाया है, प्रेजेंट किया है। तो वैसे ही मैं चाहूंगी कि एक खूबसूरती के साथ अगर हम काम करें, आज की जनरेशन जो चेंजेस तो ला रहे हैं, लानी भी पड़ेंगी, बिकॉज उनकी सोच अब डिफरेंट है
0: जी।
1: वो होनी लाजमी है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए या हमको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बैलेंस होके करें, और उसमें बेसिक जब आप रखते हो साथ में, बेस जो हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, क्लासिकल बेस म्यूजिक है, अगर वो साथ में चलता रहे और उसको उसी ढंग से पेश किया जाए और नयापन भी रहे, ताकि दोनों जनरेशन, चाहे वो पहली जनरेशन हो या आगे की जनरेशन, अभी की जनरेशन हो, सब कोई उसको पसंद करे, तो वो एक बहुत अच्छा चेंज है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: आपने अभी भूमि एल्बम की बात की और आपने राज पंडित जी की बात की, आपके सुपुत्र हैं वो, संगीत के साथ जुड़े, एक माँ जब अपने बेटे को इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देखती है तो वो क्या सोचती है?
1: मैं तो वो, हमारा तो यही रहा है कि बस उसने अडॉप्ट किया म्यूजिक को, बचपन से वो सीखता रहा, पहले वो तबले से शुरू किया, बाद में की पियानो से शुरू किया, बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे वो सिंगिंग तो कर ही रहा था, सीख ही रहा था, तो गुरुओं से सीखना शुरू किया, एंड देन इनके साथ संपर्क किया, संगीत सलीम सुलेमान जी, वो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी तो वो इसी माहौल में बढ़ता रहा और मुझे कभी भी वो ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो कहीं पहुंचा है हाई लेवल पे, या मुझे तो ऐसा लगता है बस अभी शुरुआत है, आगे बढ़ता रहें और यही कोशिश रहती है कि अच्छा काम करे, आगे बढ़ते रहे, आशीर्वाद रहे सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहे। मेरी तो यही रहती है थिंकिंग, मैं कभी भी वो सोचती नहीं हूँ कि मैं कहीं पहुंची हूँ, मेरा बेटा कहीं पहुंचा है, बस ये है कि यू फील प्राउड। प्राउड तो होता है, प्राउड इन नॉट इन दैट सेंस कि अब इसने फतेह पा लिया है तो फिर अब बस खत्म, इतना ही है। शुरुआत अच्छी है, वो बस ब्लेसिंग है और उसकी मेहनत है, हार्ड वर्क है। बिकॉज जब आप संगीत के इसमें जगत में जाते हैं, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जीना पड़ता है, उसी रंग में जीना पड़ता है, आपको काफी सारी चीजों का कंप्रोमाइज करके आपको उसी लय में रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज अचीव होती है।
0: यानी
1: तो बस कोशिश जारी है, यही
0: यानी कि त्याग, समर्पण और निरंतर काम करना बहुत जरूरी है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आज के युवाओं को
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगे जो खास करके संगीत और गायन क्षेत्र में है?
1: बस यही है जो मैंने कहा कि अगर किसी को करना है, म्यूजिक में ही जाना है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है एंड देन मेहनत, हार्ड वर्क और सीखना। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जो एक अच्छे गुरु से आपको मिल सकती है
0: जी।
1: अच्छे गुरुओं के साथ उठना बैठना सीखना, तब आप इसको अचीव कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो गुरु ने सिखाया उस पे चलना, उस पे अमल करना, उसके साथ टच में रहना। मैंने अभी कहा कि जीना पड़ता है
0: जी।
1: तो संगीत को एक जीने की बात है
0: जी।
1: तो आपको बहुत उसमें समर्पण भाव से करना पड़ेगा, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है।
0: एक कलाकार के लिए विनम्र होना कितना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कला का हो?
1: बहुत जरूरी है, वही तो चीज है, ऊपर वाला ही देता है ना जो हमको देता है
0: जी।
1: हमको कहीं, हम खुद से नहीं क्रिएट कर रहे हैं कुछ, जो भी हमारे, जैसे मैं गा रही हूँ तो मुझे अगर गला कुछ चल रहा है तो वो ऊपर वाला ही चला रहा है ना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है
0: जी।
1: जब वो चाहेगा तो वो गवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं गवाएगा, कुछ भी मैं करूँ। तो जब तक आप उसके शरण में नहीं हो, समर्पण नहीं हो भगवान के, आप जिसको मानते हो उनके इसमें सरेंडर भाव में नहीं हो, तो तब तक नहीं होता है कुछ, तो बहुत जरूरी है।
0: अब हम बात करते हैं बेटियों की। हमारे समाज की नींव है बेटी, जब वो बाबुल का घर छोड़ अपने पिया के घर जाती है। इसके संदर्भ में आपने अपनी एक सीरीज साजे कश्मीर में एक गीत गाया है
1: जी,
0: तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप वो सुनाएं और फिर हम इस कार्यक्रम का अगले सेक्शन में समापन करेंगे।
1: जी जी, ये एक बहुत ही सुंदर रचना है, नजीर दास जी कश्मीर के बहुत वरिष्ठ पोएट्स में से रहे हैं, उन्होंने लिखा है। तो जब मैंने इसके लिरिक्स सुने, किसी से मैंने सुने थे और मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। और इसके कंपोजिशन पंडित भजन सुपुरी जी की है। फोक बेस्ड कंपोजिशन है, बहुत पॉपुलर कंपोजिशन है पंडित भजन सुपुरी जी की है।

0: निर्जा जी, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप आज यहाँ से जाएं और आप जाने की जिद ना करें, पर समय जो है वो हमें इजाजत नहीं देता है। और आपसे अंत में ये जानना चाहूंगा कि आज आप पहली बार FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आए, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
1: मुझे तो फखर महसूस हो रहा है, मैं सच्ची बोलती हूँ, बिकॉज कश्मीर से निकल के जिस जद्दोजहद से गुजर के आपने ये सेटअप बनाया है और अपना नाम कमाया है आपके काम में भी, और आपने इस क्रिएटिव फील्ड को यहाँ पे इस जगह पे अननोन जगह जो थी आपके लिए, बट ऑब्वियसली आपको बहुत सहायता भी मिली होगी जो यहाँ पे आपके लोकल्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, और गुरुओं का भी आपको संग मिला होगा, आशीर्वाद मिला होगा, तब जाके आपने ये सेटअप यहाँ पे डाला है और आपने शुरू किया है और बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तो बम्बई में बैठ के बहुत खुशी महसूस होती है कि वितस्ता रेडियो, वितस्ता नाम जो रखा है आपने, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ वितस्ता, बहुत ही एक प्रेशियस और बहुत ही एक ऐसा नाम है जो हमारे खून में बहता है, तो वो नाम से आपने ये रेडियो का शुरुआत की और चल रहा है इतने अच्छे लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल पे, मैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ आके जो यहाँ की वाइब्रेशन है, लिटरली मुझे लगा मैं किसी मंदिर में अंदर आ गई हूँ, और आपका वो जो ऑरा है इस स्टूडियो का, वाइब्रेशन जबरदस्त पावरफुल, और क्योंकि आप खुद प्योर हो, आप खुद सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर आर्ट, आप खुद एक आर्टिस्ट हो, तो आपको पता है ये आर्ट क्या चीज है, आपका पैशन और आपका डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो आशीर्वाद है, जो आपके शब्द है, इनको हम संजो के रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस सफर पर हम चले हैं आखिरी सांस तक इस सफर को जारी रखेंगे। और अम्बाला के जनता के लिए हम पिछले 36 वर्षों से जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहेगा। निर्जा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा और मैं यहाँ बैठ के आपसे कुछ बातें कर पाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
0: थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुफ्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान थे कश्मीरी फोक, सूफी, गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती निर्जा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने, रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: बढ़ती। You are listening FM 90.0 MHz, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे मा और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणा के रीति रिवाजा के बारे मा। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर नु 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज यकीनी बातचीत करेंगे आज के आमंत्रित मेहमान श्रीमती नीरजा बख्शी के साथ। रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपुरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट एवं निर्देशन आर जे किरनी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM और मैं हूं आपके रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम घर परिवार में, जहां बात होती है रिश्तों की, एहसासात की और उन अनमोल बंधनों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। कहते हैं घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से, अपनापन से और रिश्तों की गर्माहट से। और आज का हमारा विषय है बहनों का प्यारा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती भी है, ममता भी है और सुकून भी। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई खूबसूरत रिश्तों की पहचान है। एक समर्पित होममेकर, एक स्नेहमयी माँ और एक संवेदनशील बहन। घर की जिम्मेदारियों को मुस्कुराकर निभाना, बच्चों के लिए छांव बन जाना और रिश्तों को धागे की तरह सहेज कर रखना, ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जो आज हमारी गेस्ट है उनके पास ये सारे हुनर है। इन सभी भूमिकाओं को उसने सिर्फ निभाया नहीं बल्कि खूबसूरती से जिया है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम घर परिवार में।
2: रेडियो विदस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरजा बख्शी, मैं जम्मू से हूँ। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और जम्मू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है।
1: आपका हमारे घर परिवार कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। बहनों के इस खास विषय पर आपके अनुभव और आपके एहसास सुनने के लिए हम सब बेहद उत्सुक हैं। घर की दीवारों में जो खुशबू ठहर जाती है वो अक्सर किसी औरत की ममता कहलाती है। रिश्तों को जो चुपचाप सींचती रहती है वही घर की असली ताकत बन जाती है। नीरजा जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती है, आपके हिसाब से इस बात का असली मतलब क्या है? क्या सच में बहनों के बीच एक ऐसा एहसास और जुड़ाव होता है जो शब्दों से परे होता है?
2: जी हाँ किरनी जी, वाकई में बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती हैं। वो न सिर्फ साथ में खेलती कूदती हैं, बल्कि वो साथ में खाती पीती हैं, उठती बैठती हैं, हर छोटा बड़ा काम भी करती हैं। इसके अलावा वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती भी हैं, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा होता है, उनकी आपस की लड़ाई उनको याद नहीं रहती और ना ही उनको एक दूसरे के खिलौने छीनने से फर्क पड़ता है। ये ऐसा प्यार है जो बिना किसी मतलब के एक दूसरे से किया जाता है। ये ऐसा प्यार होता है जहाँ माँ की डांट से एक दूसरे को बचाया भी जाता है।
1: नीरजा जी, आपने सही कहा, बहन का रिश्ता शब्दों से नहीं एहसासों से समझा जाता है, शायद इसलिए ये रूह से जुड़ा हुआ लगता है। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, बचपन में बहन का साथ हमारे स्वभाव, आदतों और सोच को किस तरह आकार देता है? क्या वही बचपन की यादें आज भी इस रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनी हुई है?
2: बचपन में बहन ही सबसे ज्यादा करीब होती है, उसी के साथ खिलौने, कपड़े, जगह सब कुछ शेयर होता है और वही छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह बनती है, पर ये लड़ाइयाँ कभी दूर नहीं करती।
1: आपने सही कहा, बचपन की वही छोटी छोटी बातें बड़े होकर भी रिश्ते को सबसे मजबूत डोर बन जाती है। अब आपसे मेरा अगला प्रश्न है, लोग कहते हैं कि बहन का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा होता है, आपके अनुसार इस रिश्ते की वो कौन सी बात है जो इसे हर रिश्ते से अलग और खास बनाती है?
2: किरनी जी, आप जानती हैं, दोस्त हम जिंदगी में बाद में बनाते हैं, पर बहन बचपन से साथ होती है। दोस्त को हम अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन बहन पहले से ही उस कहानी का हिस्सा होती है। दोस्त कभी कभी समझता है, पर बहन बिना समझाए सब कुछ समझ जाती है। दोनों खास होते हैं, लेकिन बहन का रिश्ता ज्यादा गहरा और पुराना होता है।
1: सच कहा, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन बहन का रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरा होता है। दोनों रिश्ते हमारी जिंदगी में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपसे मेरा अगला प्रश्न है, जिंदगी की मुश्किल घड़ियों, उलझनों और चुनौतियों में बहन की मौजूदगी क्या मायने रखती है? क्या वो सचमुच में एक ऐसे सहारे की तरह होती है जो बिना कहे समझ ले?
2: आप जानती हैं, जिंदगी में हर इंसान को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ वो अपने दिल की बात बता सके, जिसके साथ वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके और जिस पर वो भरोसा कर सके। इसी तरह बहन के साथ सीक्रेट शेयर करना भरोसे को मजबूत करता है। जब आप अपनी बात बिना डर के कह सकते हैं, रिश्ता गहरा होता है। ये सीक्रेट्स सिर्फ बातें नहीं, एक दूसरे का भरोसा होती हैं। इसी भरोसे से बहन का रिश्ता मजबूत होता है। अब बात है मुश्किलों की। जब दुनिया समझ नहीं पाती, बहन बिना समझाए समझ लेती है। वो बस पास बैठकर भी हिम्मत देती है, कभी शब्दों से, कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। मुश्किल वक्त में बहन सबसे बड़ा सहारा बनती है।
1: आपने सही कहा, मुश्किल वक्त में बहन का साथ सच में एक हिम्मत जैसा होता है जो संभाल भी लेता है और समझ भी लेता है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़ी बहन बहुत केयरिंग होने के साथ साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि सख्ती के पीछे भी छुपा हुआ गहरा प्यार और जिम्मेदारी होती है?
2: जी हाँ, असल में बात ये है कि स्ट्रिक्टनेस और प्यार, ये दो चीजें अलग है। स्ट्रिक्टनेस इंसान को गलतियां करने से बचाती है और प्यार इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करवाती है। बड़ी बहन शायद स्ट्रिक्ट इसलिए होती है क्योंकि उसको घर में जिम्मेदारी का एहसास बचपन में ही पैदा हुआ होता है। वो माँ की तरह हर बात पर नजर रखती है, पर बहन की तरह प्यार भी करती है। उसकी डांट में सख्ती कम, चिंता ज्यादा होती है। बड़ी बहन घर की वो छाया होती है जो बिना कहे सब संभालते रहना चाहती है। कभी टीचर बन जाती है, कभी दोस्त और कभी माँ का रूप ले लेती है। केयरिंग होना उसके दिल की नरमी का एहसास है और स्ट्रिक्ट होना उसकी फिक्र का तरीका है।
1: आपने बहुत सही कहा, बड़ी बहन की सख्ती में भी एक अजीब सी मिठास होती है क्योंकि उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। नीरजा जी, बहुत प्यार भरी बातें हुई, क्या आप संगीत सुनते हैं?
2: जी हाँ, मैं संगीत सुनती हूँ और संगीत से ही तो रूह को सुकून मिलता है।
1: तो फिर चलिए, आप अपना पसंदीदा गीत बताइए।
2: मेरा पसंदीदा गीत है अपने तो अपने ही होते हैं।
1: तो चलिए सुनाते हैं आपका पसंदीदा गीत, आपको और अपने श्रोताओं को।

0: एक और प्रश्न है, अक्सर देखा जाता है कि छोटी बहन बड़ी बहन की बात मानती है, उस पर भरोसा करती है और उसे एक मिसाल की तरह देखती है। इस आज्ञाकारिता के पीछे कौन सा भाव काम करता है?
1: किरणी जी, अक्सर देखा जाता है छोटी बहन शुरू से ही, बचपन से ही माँ के बाद अपनी बड़ी बहन को देखती है। वो हर काम अपनी बहन की निगरानी में करती है, हर छोटी बड़ी जिद अपनी बहन के सामने पूरी करती है। इसीलिए उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन कभी उसके लिए गलत नहीं सोचेगी, कभी उसके लिए गलत नहीं करेगी और ना ही कभी उसको गलत रास्ता दिखाएगी। यही कारण है कि छोटी बहन अक्सर आज्ञाकारी होती है। बचपन से ही बड़ी बहन को एक मार्गदर्शक की तरह देखती है। उससे लगता है कि वे कह रही है तो यही सच है और उसमें ही उसकी भलाई है। छोटी बहन बहस भी इसीलिए कम करती है क्योंकि उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इसीलिए उसका आज्ञाकारी होना, बहन के लिए दिल में इज्जत होना और बहन पर विश्वास होना स्वाभाविक है।
0: आपने सही कहा, क्योंकि छोटी बहन का विश्वास ही इस रिश्ते को और खूबसूरत बना देता है। अब आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि बड़ी बहन बहन कम और माँ ज्यादा लगती है, किन बातों में वो माँ जैसी भूमिका निभाती हुई नजर आती है?
1: किरणी जी, आप जानती हैं, बच्चा जब छोटा होता है उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता और माँ अपने दूसरे कामों में व्यस्त होती है और बड़ी बहन अपना हक और अपना फर्ज बखूबी निभाती है। यही वजह है जब बड़ी बहन अपने छोटों को उनकी गलती बताती है और उनको गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, तब बड़ी बहन में माँ की झलक दिखाई देती है। वो अगर डांटती भी है लेकिन वो साथ में संभालती भी है। वो अगर उसको कुछ गलत करते देखती है, वो उसको बिल्कुल उससे बताए बिना ही उसको उस गलती से दूर कर देती है। माँ की तरह जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है तो उसे लगता है कि शायद मेरी माँ भी इतने अच्छे से मुझे नहीं संभाल पाती। जब माँ पास ना हो तो बड़ी बहन ही संभालती है और जरूरत पड़ने पर माँ का रूप ले लेती है। बिना कहे और बिना दिखाए वो एक माँ ही बन जाती है।
0: आपने बहुत सही कहा कि कई बार सच में ऐसा लगता है कि बहन बहन कम और माँ ज्यादा होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आज के बदलते दौर, दूरियों और व्यस्त जीवन शैली के बीच भी बहनों का रिश्ता किस रूप में बना हुआ है? क्या आज भी वही अपनापन, वही जुड़ाव महसूस होता है?
1: आज के दौर में जिंदगी पहले से काफी तेज हो गई है, सब अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, फिर भी बहनों का रिश्ता वक्त की कमी से कमजोर नहीं पड़ता। रोज बात ना हो तो भी एक छोटा सा मैसेज और कॉल दिल को सुकून दे देता है। आजकल बहनें एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन गई हैं। दूर रहकर भी पास महसूस करना, यही आज के दौर की बहनों के रिश्ते की खूबसूरती है।
0: आपने सही कहा कि दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, बहनों के बीच की नजदीकियां कभी कम नहीं होती है, क्योंकि आज के बदलते दौर में एक फोन कॉल से हमें लगता है कि हम एक दूसरे के आसपास हैं।
1: किरणी जी, मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं, क्या मैं आपके लिए वो पंक्तियां बता सकती हूँ?
0: जी हाँ, क्यों नहीं।
1: मेरी पंक्तियां इस तरह हैं, किताबों के पन्नों से पाक है फितरत उसकी, हर लफ्ज में बहती है सिर्फ मोहब्बत उसकी, किरणी की लेखनी में दिखता है बहनों का दुलार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार।
0: बहुत बढ़िया, आपने मेरे लिए भी शायरी बोली है। ये खाली शायरी नहीं है बल्कि तेरे लफ्जों में मुझे अपनी परछाई नजर आती है। तेरी अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं, मेरे लिए वो बचपन की यादें भी है। तू शायरी सुनाए और मैं चुप रहूं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम मेरी आवाज का हिस्सा है। शायरी तो बहाना है, असल मैं तो मुझे रुलाना चाहती है। शायरी तो बहाना है, असल मैं तो मुझे रुलाना चाहती है। तेरे लफ्ज का असर देखो, दिल को सीधा बचपन में ले जाती है।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का घर परिवार कार्यक्रम जारी है। अब हम इसके अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। मिर्जा जी, अभी आपने जो शायरी बोली, आपने मुझे बहुत ज्यादा भावुक कर लिया। चलिए अब आगे। मिर्जा जी, घर संभालते हुए हर रोज ये सोचना पड़ता है कि परिवार को कुछ ऐसा खिलाया जाए जो सेहतमंद भी हो, टेस्टी भी हो और ज्यादा वक्त भी ना ले। ऐसा कौन सी रेसिपी है जो आप अक्सर बनाती है, जो झटपट तैयार होती है और पौष्टिक भी होती है?
1: मैं अक्सर वेजिटेबल ओट्स चिल्ला बनाती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है और बनाने में भी आसान है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, ओट्स का पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 2 से 3 चम्मच दही, बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया। स्वाद अनुसार इसमें नमक चाहिए, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा अदरक। थोड़ा पानी डाल के इसका गोला बनाना है। फिर सब चीजों को मिलाकर डोसा जैसा गोला बना लेना है। गर्म तवे पर हल्का सा तेल लगाकर इस गोले को फैला देना है। दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेक लेना है। इससे दही या हरी चटनी के साथ गरम गरम खाने का स्वाद कुछ अलग ही आता है।
0: बहुत बढ़िया है ये रेसिपी। वाकई एक तो हेल्दी भी है और झटपट बनने वाली भी। आगे नीरजा जी, बदलते मौसम में अक्सर सर्दी, खांसी और सोर थ्रोट की परेशानी हो जाती है। घर संभालते हुए आप जरूर कोई ऐसा घरेलू नुस्खा अपनाती होंगी जो आसान भी हो और असरदार भी। हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएंगी जो तुरंत राहत दे सके?
1: मैं अक्सर हल्दी और शहद का नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, जो सर्दी, खांसी और गले की खराश में काफी राहत देता है। इसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद चाहिए और 1/4 चम्मच हल्दी चाहिए। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर दिन में 2-3 बार धीरे धीरे चाट लीजिए।
0: बहुत बढ़िया। वैसे भी हल्दी में सूजन कम करने की ताकत होती है और शहद गले को नरम करती है। ये नुस्खा इम्यूनिटी बढ़ाता है और सोर थ्रोट में भी जल्दी सुकून देता है। आखिर में मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको बहन शब्द को एक खूबसूरत एहसास, एक परिभाषा या एक रूपक में डालना हो तो आप उसे किस तरह बयान करेंगी?
1: किरणी जी, मैं बहन को एक ऐसे एहसास के रूप में बयान करूंगी जो जिंदगी भर साथ चलता है। बहन वो होती है जो बचपन से आज तक आपके हर रूप को जानती है। वो डांट भी सकती है, हंसा भी सकती है और जरूरत पड़ने पर संभाल भी लेती है। पास हो या दूर, उसका प्यार हमेशा दिल के करीब रहता है। किरणी जी, मैं इसी एहसास को कुछ पंक्तियों के रूप में बयान करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आगे बढ़ूं?
0: जरूर जरूर, आप अपनी पंक्तियाँ हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाइए।
1: रिश्तों की भीड़ में सबसे प्यारा नाम है बहन। घर की रौनक, घर का सुकून, घर की शान है बहन। मुश्किल में जो सबसे पहले साथ खड़ी मिलती है, हर दर्द की पहली पहचान है बहन।
0: बहुत ही अच्छी लाइनें, एक तो हार्ट टचिंग है और बहुत ही सुकून देने वाली लाइनें हैं।
1: किरणी जी, मैंने आपके बहुत से सवालों का जवाब दिया। मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकती हूँ?
0: जरूर, आप अपना सवाल पूछिए।
1: किरणी जी, जिस तरह मुझे सारी उम्र अपनी बहन की एक याद मेरे दिल दिमाग में रही, क्या कोई ऐसी याद है जो आपके दिल दिमाग में भी है?
0: जी हाँ, एक ऐसी याद है जो मैं हमेशा याद करती हूँ। क्यों? कारण उसका ये भी है, क्योंकि जो मेरी बहन है वो मेरे से छोटी है, मगर छोटी होते हुए भी उसने एक बार, मतलब एक बार के कई बार, मेरा जो ध्यान रखा, जो मेरा ख्याल रखा एक बड़ी बहन की तरह। एक बार का मुझे वाकई याद है कि मैं काफी बीमार हो गई, मुझे फीवर था, तो क्योंकि हम कश्मीर में रहते थे, वहां सर्दी बहुत थी, तो वहां ठंडा पानी तो पी नहीं सकते थे, तो उन दिनों हमारे घर में गैस नहीं थी। वो रात के 1 बजे 2 बजे उठती थी, वो चूल्हे पर गर्म पानी करती थी मेरे लिए, मुझे चाय पीनी होती थी, वो पूरी पूरी रात मेरे लिए जागती थी। वो कम से कम 4-5 दिन का समय हुआ गया जब तक मैं ठीक हो गई, वो रात को नहीं सोती थी। वो हमेशा जब तक मैं ना सोती थी वो सोती नहीं थी, और ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि कभी कभी वो छोटी होकर भी मेरी बड़ी बहन बन जाती है, और ये याद हमेशा मुझे याद आती है। जब भी मैं बीमार होती हूँ मुझे वो चीज़ याद आती है, वो मेरा कितना केयर करती थी। और मैं चाहती हूँ कि बहनों का प्यार ऐसा ही बना रहे और हमेशा एक मिसाल बने कि बहनें ऐसी होती है।
1: तुमने ये किस्सा सुनाकर मेरा दिल भर दिया। सच तो ये है कि तुम्हारा मेरे लिए लगाव तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। पर क्या तुम्हें पता है, मेरे पास भी एक ऐसी याद है जिसने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरी बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं रहा। जब मैं कॉलेज की जल्दी में खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। वे मेरे हाथ में खाना पकड़ाकर मेरे बाल बनाना लगती। उनका वो प्यार भरा रवैया और ये जिद के भूखे पेट नहीं जाना आज भी मेरे दिल का करीब है। वो सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरे बचपन की सबसे मजबूत डाल थी। किरणी जी, मैंने कुछ ऐसी लाइनें उनके बारे में लिखी हैं, मैं थोड़ा वो बताना चाहती हूँ। वो बचपन की फिक्र, वो बहन का दुलार, मैं भूल जाती थी खुद को पर उन्हें था याद हर बार। न जाने दिया कभी भूखे पेट मुझे दहलीज के पार, कभी कंघी से बाल सवारे तो कभी निवालों से ढेर सारा प्यार।
0: आज हमारी जो गेस्ट थी, आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहनों के प्यार के ऊपर इतने अच्छे अच्छे हमें उत्तर दे दिए। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का समय खत्म होता है। श्रोताओं, आज की इस प्यारी सी बातचीत में हमने जाना कि बहन का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जिंदगी का एक सुकून है, एक ऐसा साथ जो वक्त दूरी और हालात से परे होता है। बहन वो होती है जो हमारी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पढ़ लेती है और हमारी खामोशी में छुपे सवाल भी सुन लेती है। रिश्तों की भीड़ में जो सबसे खास होता है वो बहन का प्यार ही तो होता है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो बस दिल में महसूस होता है। सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहती हूँ, आज अगर आपकी भी कोई बहन है पास या दूर, तो इस कार्यक्रम के बाद उसे एक बार जरूर याद कीजिएगा, उसको फोन कीजिए, क्योंकि बहनें जिंदगी में बार बार नहीं मिलती, वह किस्मत से मिलती है। इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं किरणी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
1: मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती नीरजा बख्शी। कार्यक्रम रिकॉर्ड एवं एडिट किया भरत सोपोरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आपकी अपनी आवाज रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: की ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला गेट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, मैं हूं भारत सोपोरी, आपका रेडियो दोस्त। लेकर आया हूं वितस्ता गीतमाला एपिसोड 3। आज का ये एपिसोड आधारित रहेगा देश विदेश के जाने माने और अंबाला की शान आदरणीय नफ्स अंबालवी साहब के एक कविता संग्रह शराबों का सफर पर, जहां हम आपको सुनाएंगे नफ्स साहब के लिखे शेर और उनके साथ जुड़े नगमे, गीत और गजलें। पर उससे पहले आपको बताऊं कि शराबों का सफर के मायने क्या है। वो रेत जो गर्मियों में दूर से पानी की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और प्यासे उससे पानी समझकर उसकी ओर दौड़ते हैं, या यूं कहें ए जर्नी ऑफ मिराजेस। इस शायर की पंक्तियां हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्यों में कही है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमां कुछ कम है। ये काव्य संग्रह नफ्स अंबालवी साहब ने अपनी बेटी आकांक्षा के नाम किया है। मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मेरे हिसाब में कुछ नेकियां निकल आई। इस काव्य संग्रह पर देश के कई विद्वानों ने अपनी शाबाशी दर्ज की है नफ्स अंबालवी साहब के लिए। मुनव्वर राणा साहब लिखते हैं, शायद यही सबसे बड़ी खूबी नफ्स अंबालवी के कलाम में है। दिल्ली और लखनऊ की जुबां और मुहावरों को हरियाणा में बैठे हुए शायर ने जिस एहतराम और जिम्मेदारी से भरता है, वो काबिले सिताइश है। नफ्स अंबालवी साहब के कुछ शेर पर उन्होंने नजर डाली है। अब तक तो इस सफर में फकत तशनगी मिली, सुनते थे रास्ते में समंदर भी आएगा। मुजफ्फर रजमी साहब लिखते हैं, नफ्स अंबालवी को असर हाजिर के गजल को शायरों में इम्तियाजी हसियत अता करती है। उनके ये शेर उनकी शायरी की बुलंद परवाज की अलामत है। लिखते हैं नफ्स अंबालवी के कुछ शेर। फिर एक बार समंदर तेरा उड़ाएगा मजाक, निकल पड़ा हूं मैं कागज की कश्तियां लेकर। मेरे ख्याल की परवाज बस तुम ही तक थी, फिर उसके बाद मुझे कोई आसमान न मिला। उसने पुरखों का मकान बेच तो डाला, लेकिन देर तक फिर दरो दीवार से मिलकर रोया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विदस्ता गीतमाला और आज का कार्यक्रम आधारित है नफ्स अम्बालवी साहब के एक कविता संग्रह शराबों का सफर पर। आइए कुछ और कविताएं आपको सुनाते हैं।

लीसा नहीं देखा जाता। मेरे लहजे पे ना जा, कॉल का महफूम समझ, बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता। दिल में एक हुक सी उठती है, रुला देती है, हमसे रोता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता। लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता। गम की बाजार में कीमत नहीं पूछी जाती, दर्द महंगा है कि सस्ता नहीं देखा जाता। अक्स उबरेगा नफ्स, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता।

चांदनी चुप थी, शबे गम के सितारे चुप थे, जो भी उस रात गवाहों में थे सारे चुप थे। देखिए वक्त की साजिश कि चिनारों के तले जितने लम्हे तेरे साथ गुजारे चुप थे। चांद का अक्स भी अफसुरदा सा था पानी में, खामोशी झील पे तारी थे, शिकारे चुप थे। दिल में एक शोर तमन्नाओं का बरपा था, मगर लब मुकफ्फल थे, निगाहों के इशारे चुप थे। लोग जिस नाम को बेताब थे सुनने के लिए, हम उसी नाम की रुसवाई के मारे चुप थे। बेगुनाही मेरी इंसाफ से महरूम रही, मुझको जिन जिन पे भरोसा था वो सारे चुप थे। मेरी आंखों में वो मंजर है कि जाता ही नहीं, जब सफीना मेरा डूबा तो किनारे चुप थे। बेहुनर लोगों में बढ़ते रहे एजाज, मगर जिनकी रौनक थे नफ्स, हम वो इदारे चुप थे।

0: आपका कतरा हूं जिद पर आ गया हूं, दहर पर सैलाब बनकर छा गया हूं। कीमती सामान हूं इस घर का, लेकिन भूल से जाने कहां रखा गया हूं। सोचता हूं गाऊं वापस लौट जाऊं, शहर से कुछ इस कदर उकता गया हूं। धूप थी तो अपना साया हम सफर था, धूप डलते ही बहुत घबरा गया हूं। घर से खुद को ढूंढने निकला था, लेकिन बेखुदी में आपके घर आ गया हूं। गम छुपा भी लूं तो आंखें बोलती है, और मैं हर मर्तबा पकड़ा गया हूं। एक मुद्दत से मैं तन्हा जी रहा था, इसलिए इस भीड़ में घबरा गया हूं। अपनी गुर्बत से मोहब्बत हो चली है, मुफलिसी तुझको भी मैं रास आ गया हूं।
1: वक्त

बस्ती नहीं देखी, कभी सहरा नहीं देखा, निकले हैं तो दीवार का साया नहीं देखा। एक अश्क पर हैरान ना हो आंखों में हमारी, तुमने अभी ठहरा हुआ दरिया नहीं देखा। शायद कि वो लौट आया समंदर के सफर से, पहले कभी इतना उससे प्यासा नहीं देखा। पत्थर भी अगर मोम ना हो जाए तो कहना, तुमने मेरे सजदों का सलीका नहीं देखा। मुमकिन है मैं अब खुद को भी ना पहचान पाऊं, एक उम्र से आईने में चेहरा नहीं देखा। मैं सर पे कफन बांध के जिस दिन से चला हूं, तब से मेरी कश्ती ने किनारा नहीं देखा। जुगनू के चमकने से भी डरते हैं यहां लोग, इस शहर ने मुद्दत से उजाला नहीं देखा। उसने कई मासूम बशर कत्ल किए हैं, उस शख्स के सीने पे वो तमगा नहीं देखा। तुम बीट का मरकज तो बने फिरते हो, लेकिन तुम सा भी नफ्स शहर में तन्हा नहीं देखा।

इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010, 7056413010। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 3। आज का कार्यक्रम आधारित था श्री नफ संभालवी के काव्य संग्रह सराबों का सफर पर। एडिट किया दीपक कश्यप ने, रिकॉर्ड डायरेक्ट और पेश किया भारत सपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: नब्बे आशारिया सिफर एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: दिलीप कुमार, अरे तुम बस गाड़ी को भी यहीं पंक्चर हो रहा था। हम पहुंचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
1: वाह, अरे वाह, अरे वा।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियोस के माध्यम से, गांव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती।

सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

دوستو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں رمیش مراٹھا، نمستے۔

और सहराओं में खेली लुक्का छुपी, फिर पिघलते रहे भरी दोपहर की तपिश में। मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, और मैं चुपचाप सहता हूं। हे हमें रात की ठंड का इंतजार, क्योंकि यहां तुम्हें मुझे इन गुप्त अंधेरों में शीतलता का एहसास जो है। आओ यहां इन सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर से बीते दिनों की यादों को

हुस्न का जेवर, मुस्कुराना हमें भी सिखा दीजिए। अभी तो बहार की शुरुआत है, पर मौसम बदलने में देर कहाँ लगती है। ये भी शिकवा नहीं कि सब कुछ क्यों सहता रहा। बात इतनी सी है,

जब जब तेरा जिक्र होता है महकता हूँ बहकता हूँ भटकता हूँ रूह में उतर जाती हो ख्वाबों की ताबीर बन जाती हो इन हवाओं में मुस्कुराती हो इन फिजाओं में गुनगुनाती हो जब जब भी तेरा जिक्र होता है मैं महकता हूं

सिर्फ तुम्हारी परछाई है, जिसे मैं हर पल महसूस करता हूं, बिठाता हूं अपने पास, संवारता हूं, सजाता हूं, बातें करता हूं। गर्ज इश्क था तुम्हारा वजूद, पर फिर भी तुम हमारे न हो सके, और तमाम सफर परछाइयों के साथ ही गुजर गया। ये जमीन चुप, आसमान चुप, मैं

आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। यहां हर तरफ गूंजती है सदाएं इश्क की और तुम्हारी आंखों में झील जैसी खामोशी और बदलते मौसमों की झलक दिखाई देती है। यहां हमारे संग संग बादल तैरते हैं और इन नीले आसमानों में हम खोजते हैं अपनी अपनी वीरान बस्तियां। आक्रोश भी है कि ये बदलते मौसम हमारे कभी क्यों नहीं हुए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और आप सभी को ये कहने आया हूं कि आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं और हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। आज के हमारे प्रसारण के बाद हम आपसे हर दिन बात करते हैं और आज भी बात करेंगे, जो हमें आपके लिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज वेतस्था पर पेश करते हैं। हमेशा आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया होगा और इसने आपके दिन को और भी आनंददायक बना दिया होगा। दोस्तों, आज जाते जाते मैं आपसे एक बेहद जरूरी विषय पर बात करना चाहूंगा, हमारा पर्यावरण। आज के दौर में पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन चुकी है। हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कोई प्रश्न खड़ा करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसका समाधान भी आप तक पहुंचाए। निर्णय आपने करना है, आपको जो सही लगता है वो करना है। हमारी एक कोशिश है सिर्फ आप तक एक सोच पहुंचाने की। सबसे पहले हमें पेड़ पौधों को बचाना होगा और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना होगा। हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में अगर एक पेड़ भी लगाया जाए तो हमारी धरती हरी भरी हो सकती है। दूसरा, हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना होगा और उसकी जगह कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। तीसरा, पानी की बर्बादी को रोकना होगा। नल खुला छोड़ना, बेवजह पानी बहाना, ये सब आदतों से हमें दूर रहना होगा। चौथा, कूड़े का सही निरस्तारण, यानी गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना भी बहुत जरूरी है। हमें कैसे पर्यावरण चाहिए? एक ऐसा पर्यावरण जहां हवा शुद्ध हो, नदियां साफ हो, जंगल घने हो और हर तरफ हरियाली नजर आए, जहां बच्चे खुले और साफ हवा में सांस ले सके, जहां जल स्रोत प्रदूषण से मुक्त हो और जैव विविधता यानी अलग अलग जीव जंतु और वनस्पतियां सुरक्षित रह सके। एक संतुलित पर्यावरण ही एक स्वस्थ समाज की नींव रखता है और इसका असर समाज और देश पर क्या सकारात्मक हो सकता है, आइए वो जानते हैं। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रहेगा तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। बीमारियां कम होंगी, खासकर सांस से जुड़ी और जल जनित बीमारियां। खेतीबाड़ी बेहतर होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि साफ सुथरी और हरी भरी जगहों पर लोगों को आकर्षित करने में फायदा मिलेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने में भी हमारा देश एक जिम्मेदार भूमिका निभा पाएगा। सबसे बड़ी बात, आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वस्थ और सुरक्षित धरती सौंप पाएंगे। यह था आज का विषय और उम्मीद करता हूं कि इस विषय से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे नंबर पर, जो हम अभी आपको नोट कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस संकल्प आज एक संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। छोटे छोटे कदम मिलाकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर दिन की तरह आपके लिए कुछ पंक्तियां लाए हूं जो आपको समर्पित है। आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता की लहरों सा बहता रहे ये प्यार, हर सुर में बसे अपनापन, हर धुन में इकरार, हरियाली से सजे ये धरती ये आसमां हमारा, हरियाली से सजे ये धरती ये आसमां हमारा, वितस्ता की सदा है हम सबका ये किनारा, वितस्ता की सदा है हम सबका ये किनारा। दोस्तों, ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जल्दी से आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं।
कल बुधवार 9 सितंबर 2026 को कार्यक्रम जो लाए हैं वो इस प्रकार है। हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से। हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत और कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 1 होगा, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 35 होगा। कल का शीर्षक है कर्मों के रईस, पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 9:30 बजे रेट्रो हिट्स कार्यक्रम एपिसोड 1 और प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी। और 10:25 पर कार्यक्रम मिले जुले गीत, शीर्षक होगा आस पे जीना। संगीत की सभा जारी रहेगी और कल बुधवार है, कल आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 2 बजे पिछले हफ्ते की पुनः प्रसारण में। कल 4 सितंबर 2026 को जो हमने कार्यक्रम प्रसारित किया था उसका पुनः प्रसारण कल आप दिन के 2 बजे सुन पाएंगे। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम गजल और 7 बजे वितस्ता गीत माला एपिसोड 2 पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है मिले जुले गीत। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना फीडबैक भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इसको तैयार किया हमारे कैजुअल अनाउंसर अन्नु ने। टीम रेडियो वितस्ता आप सभी के लिए हमेशा तत्पर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पर्यावरण को बचाइए, प्रकृति से प्यार कीजिए, आपका साथ और आपका प्यार यूं ही बना रहे। मिलते हैं फिर एक नए प्रसारण के साथ, तब तक के लिए मुझे भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत कल सुबह तक के लिए। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।